बहुत बहुत बहुत स्वागत है. वेलकम एवरीवन. आज का इंडियन प्रोग्राम उन रंगों की उड़ान, द फ्लाइट ऑफ दोज कलर्स. एंड यस, आई एम रेडी एंड आई विल बी हियर टिल 7 o'clock. और यस, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन. दिस इज 97.1 FM 3MDR. और दिस ये इंडियन प्रोग्राम मैं प्रेजेंट करती हूँ फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ संडे को शाम के 6 से 7 बजे तक. और आई प्रेजेंट दिस प्रोग्राम इन हिंग्लिश, विच इज़ अ ब्लेंड ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश. एंड यस, आई ब्रिंग इन थोड़ा पुराने सॉन्ग्स, थोड़े नए, थोड़े मिक्स्ड, थोड़े बीट्स, थोड़े पंजाबी. और यस, एंड ये प्रोग्राम का जो पर्पस है, आई हैव शेयर्ड दिस पहले भी, इट्स नॉट जस्ट एंटरटेनमेंट, इट्स अबाउट ब्रिंगिंग मोर कल्चरल अंडरस्टैंडिंग और कि क्या है वो लैंड, उसके बारे में. एंड यस, इसको प्रोग्राम को शुरू हुए अभी कुछ ही टाइम हुआ है, कुछ दो महीने आई गेस, दो तीन शायद, कुछ उतना टाइम हुआ है. और अभी थोड़ा मैं थोड़ा यूज टू हो रही हूँ. एंड वंस थोड़ा और कंफर्टेबल होंगी तो फिर इसको पूरे फुल स्विंग में करेंगे. अभी कभी कभी रुक रुक कर चलती है ये गाड़ी और कभी कभी दौड़ती है, पर ठीक है, दैट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस. एंड सो इट्स ओके. और अभी मैं शुरू करूँगी, अभी पहले जो था, यस, एज ऑलवेज आई स्टार्ट दिस प्रोग्राम थोड़ा स्पिरिचुअल टच के साथ, जैसे कि इंडिया में, भारत में सब कुछ पहले शुभारंभ. और तो वो अभी किया है, थोड़ा सा और करते हैं उसको एक्सटेंड, एंड फिर उसके बाद कुछ सॉन्ग्स, कुछ छोटी छोटी स्टोरीज, देखते हैं क्या फ्लो बनता है. और अब आई एम गोइंग टू प्ले ये बहुत ही प्यारा सा थॉट्स प्रोवोक करने वाला है, स्पिरिचुअल टच है इसमें. यस, इट्स ऑफकोर्स स्पिरिचुअल तो है ही, पर कुछ सोचने पे मजबूर करते हैं कई सॉन्ग्स, वन ऑफ दोज वंस. सो लेट्स सी व्हाट दिस वन स्टार्ट्स.

मैं प्रेजेंट कर रही हूँ उन रंगों की उड़ान, द फ्लाइट ऑफ दोज कलर्स। और अब मैं एक सॉन्ग नेक्स्ट जो है पुराना सॉन्ग प्ले करने वाली हूँ, पर उससे पहले ये जो अभी पहले प्ले किया काफ़ी कुछ, अगर सोचना चाहें तो काफ़ी कुछ सोचने के लिए काफ़ी मटेरियल है उसमें। और कई बारी कई सोच जो होती हैं वो लाइफ को कहाँ से कहाँ ले जाती हैं, और बहुत सारी चीज़ों से बचा भी देती हैं, और बहुत सारी चीज़ों में हेल्प हो जाती है। एनीवेज, सो अब ये जो मैं नेक्स्ट चलाने वाली हूँ, दिस इज़ ये पुराना सॉन्ग है। और सॉन्ग प्ले करने से पहले आई जस्ट वांट टू शेयर छोटा सा इसके बारे में किस्सा, वो ये कि आज की ही ताज़ा तरीन बात है। और आज मैंने अपने मम्मा को, मैं अपने मम्मा के साथ थी एंड उनको पिक किया मैंने, एंड आई वाज ड्राइविंग एंड तो आई वाज बस वो बाहर मौसम देख के, एंड यूजुअली अगर कुछ कहीं चीज़ किसी चीज़ में अगर इफ़ द वेदर इज़ नॉट इंटरफेयरिंग विद समथिंग दैट आई वांट टू डू, तो आई एम क्वाइट हैप्पी विद व्हाटएवर, किसी भी तरह का वेदर हो आई डोंट कंप्लेन, आई एम क्वाइट हैप्पी, आई एंजॉय हर तरह का, बारिश हो, धूप हो, हवा कुछ भी हो, तो अनलेस इट्स इंटरफेयरिंग विद समथिंग दैट आई वांट टू डू, तो या इट्स क्वाइट, आई क्वाइट एंजॉय इट। तो आई जस्ट मेंशन्ड मम्मा को कि व्हाट अ ब्यूटीफुल वेदर, कितना अच्छा है, एंड मैंने इतना कहा, और आई नो मम्मा यू हैव ट्यून्ड इन, तो मैंने इतना कहा और उन्होंने ये गाना शुरू कर दिया। एंड देन शी टोल्ड मी कि वो व्हेन शी यूज्ड टू बी इन यूनी तो वो तब शी यूज्ड टू सिंग दिस सॉन्ग, और तभी ये नई ये मूवी अभी आई थी, और ये 70s की मूवी है, 70s में तब उन्होंने, वो कहते थे कि उन्होंने गाते थे या गाया था, और उसके बाद अब मोर देन 50 ईयर्स ऑन, और अब उन्होंने आज उन्होंने फिर से गाया। लेकिन जब वो गा रहे थे तो गाते गाते वो थोड़ी स्टार्टिंग की तो उनको याद रही, पर बाकी उनको लिरिक्स जो थी वो भूल गई। तो आई थॉट कि वो और उनकी जनरेशन की और भी अगर किसी ने ट्यून इन किया हो, प्लीज़ डू लेट अस नो, अगर आपने ट्यून इन किया है नंबर 0497102000, सेंड अस अ टेक्स्ट इन स्टूडियो टेक्स्ट लाइन। तो मैंने सोचा कि उनको और उनकी जनरेशन के और भी लोग और हमारी जनरेशन में भी अगर किसी को नहीं लिरिक्स पता, तो आई थॉट कि ओके लेट मी प्ले द सॉन्ग, थोड़ी पुरानी उनकी यादें तरोताज़ा हों, और थोड़ा मौसम को सेलिब्रेट करने वाला ये गाना बजाया जाए। सो यस, दिस इज़ द वन कमिंग फॉर यू, आज मौसम बड़ा बेईमान है, लेट्स लिसन टू दिस।

यस आई थिंक यस यू गॉट द आइडिया. तो ये था मेरा अटेम्प्ट. और अब मैं फिर से पंजाबी, आज थोड़े पंजाबी है. और यस इंटरेस्टिंग सा एक और आपने अनदर पंजाबी फॉर यू. थोड़ा स्लो सॉन्ग है पर इंटरेस्टिंग है.

0: 107.1 FM 3MDR. You're listening to Reri, and I've been presenting Un Rangon Ki Udaan, The Flight of Those Colors. 4 minutes or 40 seconds. All right. So, अब एक लास्ट सॉन्ग और यस अगर आपको कोई सॉन्ग अच्छे लगे या कोई अच्छा लगा पर्टिकुलर सॉन्ग इसमें तो यू कैन लेट अस नो नंबर 0497102000 0497102000 ये लास्ट सॉन्ग और उसके बाद आई बी बैक फिफ्थ संडे को शाम को 6 बजे यस ये लास्ट सॉन्ग आपके लिए और यस
1: सीरत इस बार चादरां ते मोर कटिए

नया था, पहले वाले जो सॉन्ग्स थे वो थोड़े पुराने थे. एंड दैट्स ऑल फॉर मी टुडे. और अगर आपको अच्छा लगा तो देन जॉइन मी फिफ्थ संडे जो है अगले इसी महीने. यस, फिफ्थ संडे. और तब तक अपना ध्यान रखिए एंड कीप स्माइलिंग. एंड दैट्स ऑल फॉर मी.